जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

कि तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

भरी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सुन। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl। आज का भजन यात्रा का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। भजन यात्रा का प्रोग्राम जो हर सुबह आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश

प्रोग्राम में पहला भजन की ओर, जो हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। भजन का बोल है सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। मंगलवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है। अनहेल खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में।

शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस भी इसकी गई रेडियो SBS की जरिए। मंगलवार का दिन है तो चले प्रोग्राम में आपको हम ले चलते हैं ये सुंदर सा भजन की ओर।

सुंदर सा भजन अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए आप सुन सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए और दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा

की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, देश विदेश में भी हमारे बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम को भी सुनते हैं, आप सभी को स्वागत किया जा रहा है। अगला भजन जो प्रोग्राम में होगा सोनू निगम की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी हरि हरन की आवाज में।

श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए हरिहरन की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भजन यात्रा प्रोग्राम जो है समाप्त किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं के लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा श्री हनुमान जी की आरती बस पेश किया जा रहा है।

बस पीस की गई फिल्म का नाम कर्स, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अबकी बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तारगी नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

मौर्य कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में गाना बस पेश की गई शादी का लड्डू फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए गाना भी आपने सुना।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

स्वागत किया जा रहा है रेडियो SBS का प्रोग्राम में। आज मंगलवार का दिन 19 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। 9:00 और प्रोग्राम में 6 मिनट व्यतीत हो चुका है। 6 मिनटों पर नई और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। इसी तरह से प्रोग्राम में अभी आपने सुना खबरें जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। रिक्लाम न्यूज हाउस में समाचार और फरकेयर्स इनफॉर्मेशन। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0-30-22-66-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। रेडियो SBS का ऐप पर आप ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। उसी सुनने वालों है जो देश विदेश में हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, उन सभी को भी वेलकम कहा जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सभी सुनने वालों जो रात्रि भर सुबह दोपहर शाम के वक्त में 24 घंटा लगातार हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर रहे हैं, उन सभी को भी वेलकम कहा जा रहा है। सभी जो ऐप किया है और गुड मॉर्निंग कहा है, सभी को गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। का यही मतलब होता है कि यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम बहुत सी सुनने वालों रोजाना सुनते हैं, 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक पुरानी नगमे बस पेश किया जा रहा है। और आज की प्रोग्राम में सभी सुनने वालों को, हाँ हर एक को हम पूरा मौका देते हैं स्टूडियो की ओर तार करने के लिए, ऐप द्वारा तार करने के लिए और गाना मांग करने के लिए। कोई भी गाना आप सुनना चाहेंगे गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ, तो जरूर स्टूडियो की ओर आप तार कीजिए। हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप तार कर सकते हैं, ऐप के जरिए भी आप तार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 0-30-22-66-66-11। रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी हमेशा आप तार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है, और खासतौर पर आपके लिए, आप जो हमेशा हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा अपना रिएक्शंस देते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, तार भी कर रहे हैं सुबह के वक्त स्टूडियो की ओर, तो आपके लिए भी गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खासतौर पर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में। 03-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और इसी तार की नंबर के जरिए भी आप ऐप द्वारा भी तार कर सकते हैं स्टूडियो की ओर। मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में, यानी कि मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम ताज महल।

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया है, कुछ सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार किया है। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और चले यहां से प्रोग्राम में आप लोगों के मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, अगर आप गाना मांग करना चाहेंगे तो कोशिश कीजिए पुरानी फिल्म का गीत मांग करने के लिए। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है तो पुरानी नगमे होना चाहिए। तो चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एडो फिल्म फूल 1993 का फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा। और लिम्बर्ग की रहने वाली इरेना की मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

फिल्म का नाम आओ प्यार करे, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और ये खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में मांग करने वाला था रोटरडम शहर का रहने वाला ग्लेन। ग्लेन का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। ग्लेन शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना और इसी तरह से प्रोग्राम में भाग लेते ही रहना। 10 मिनट वेटेड हो चुका है सुबह 9:30। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है कि ये इस साल मिलन साइड पार्क डेन हाग में होगा 21, 22 और 23 अगस्त। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए मिलन समर फेस्टिवल .nl उसी वेबसाइट पर आप जाइए। इस साल मिलन समर फेस्टिवल यानी कि मिलन साइड पार्क डेन हाग में होगा 21, 22 और 23 अगस्त। बस अपना अजेंडा में, अपना डायरी में आप नोट कीजिए। टिकट के लिए और ग्राम फरहूर के लिए जरूर आप जाइए वेबसाइट मिलन समर फेस्टिवल .nl पर। स्पाइक निस शहर में हमारा प्रोग्राम इस वक्त भी सुनते हैं श्रीमान हेंद्रक और श्रीमती सीता बसंत। श्रीमान हेंद्रक और श्रीमती सीता बसंत स्पाइकनेस शहर में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना एक दूजे के लिए प्यार मोहब्बत के साथ बस पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी और

नया दौर फिल्म का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में। अभी आपने सुना ये काफी पुरानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्पाइकन इस शहर से श्रीमान हेंद्रक और श्रीमती सीता बसंत। स्पाइकन इस शहर से श्रीमान हेंद्रक और श्रीमती सीता बसंत एक दूजे के लिए गहरा प्यार मोहब्बत के साथ ये गाना को पेश कर रहे थे। आप लोगों के तार के लिए भी लाख लाख धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार हम आपको ले चलेंगे मॉरिशियस की ओर। मॉरिशियस में हमारा एक सुनने वालों है जो हमेशा रेडियो SBS का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम इंतजार कर रहे हैं और सुनते हैं, और वो है दुष्यंत जिंगरी। दुष्यंत जिंगरी मॉरिशियस का रहने वाला है और आज के प्रोग्राम में एक खास गाना मांग किया है। फिल्म का नाम इज्जत, मोहम्मद रफी एंड लता प्रोग्राम में होगा।

फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। मॉरिशस का रहने वाला दुशन जिंगरी ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। दुशन आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम मॉरिशस में जरूर और जरूर सुनते ही रहना, हर एक को बस खबर करते ही रहना रेडियो SBS के बारे में। 8 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में, चले अब की बार द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त अमित शिवदत्त भी सुनते हैं। अमित आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। उत्तरेख लाइट्स अराइन गिरधारी स्त्रात से राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और हमेशा भी हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। और राजन गिरधारी एक खास गाना माइटी मुकेश की आवाज में मांग किया है, अपने हुए पराई फिल्म का नाम है, तो चले मिलकर सुनते हैं। उत्तरेख लाइट्स अराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए अपने हुए पराए फिल्म का गीत अभी आपने सुना और खासतौर पर उत्रेख्ट लाइट्स रेंग गिरधारी स्ट्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए असरों बीठे राजन गिरधारी अपना गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनवालो आने वाले रविवार जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है सोमदाग 24 मई रोटरडम आहोई में। अपना टिकट आप खरीदिए, अगर अपना टिकट आपने नहीं खरीदा है तो जरूर अपना टिकट आप खरीदिए। वेबसाइट जो होता है जिस पर आप जाकर अपना टिकट को खरीद सकते हैं iStrapTickets.com वेबसाइट पर आप जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते हैं। जो भी नौटियाल आने वाले सोमदाग 24 मई रोटरडम आहोई में।

0: जाएंगे हम।
1: पुरानी फिल्म मैं नशे में हूँ 1959 का फिल्म माइती मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। रोटरडम शहर का रहने वाला राज, राज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आंसरों में थे राज, अपना मांगी हुई गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। फिर से हम आपको ले चलते हैं रोटरडम शहर की ओर और वहां पर रोटरडम शहर के अंदर में भी सबीना हमारा रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा फॉलो भी करते रहते हैं। और आज की प्रोग्राम में गाना मांग किया है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम बाप रे बाप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। रोटरडम की रहने वाली

आदित्य भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। फिल्म का नाम बाप रे बाप, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, पिया पिया पिया मोरा जिया पुकारे। और खासतौर पर रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना, सबीना की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सबीना प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, काफी खूबसूरत गाना आपने मांग किया जो प्रोग्राम में पेश की गई है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है 21, 22 एंड 23 अगस्तस मिलन समर फेस्टिवल होगा Den Haag Zuiderpark में। मत भूलना, अपना अजेंडा में जरूर आप नोट कीजिए। ग्राम फरहूर के लिए या टिकट के लिए जरूर आप जाइए मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर। रोटरडम शहर की अंदर में भी शीला रेडियो SBS का प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, हमेशा भी अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। तो आज की प्रोग्राम में रोटरडम शहर की रहने वाली शीला एक खास गाना मांग किया है, फिल्म का नाम साथी, द माइटी मुकेश की आवाज में।

माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म साथी 1968 1968 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई और रोटरडम शहर की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरा उम्मीद है शीला गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शुभ दिन पेश किया जा रहा है। हमारा प्रोग्राम इस वक्त अपना काम पर जहां पर नौकरी कर रहे हैं यानी कि मार्सन में अमित सिद्धत भी हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी सुनने वालों को बस एक शुभ दिन। अमित सिद्धत पेश कर रहे हैं इस वक्त नौकरी कर रहे हैं मार्सन शहर में और एक खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है, तो चलिए मिलकर सुनते हैं अमित सिद्धत का मांगी हुई गाना।

जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मार्सन शहर में इस वक्त काम करते हुए नौकरी पर है, काम पर है और काम करते हुए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम अमित सिद्धत और अमित सिद्धत ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। अमित शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया अमित शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार फिल्म

Zeriën. 030-262-6611. Radio SBS का ऐप के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं, और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। आमस्टरडम शहर का रहने वाला मिका सुक्कू भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। हमारा सूरीनाम देश का काफी मशहूर गाने वाला है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में, और फिल्म प्यार किए जा उसी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी के आवाज में मांग किया है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना पेश की गई फिल्म संजोग, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में लता जी की आवाज में पेश की गई। यूट्रेख्त शहर की रहने वाली श्रीमती महदा नुंदा ने तार किया और लता जी की आवाज में एक गाना मांग किया और इसी तरह से प्रोग्राम में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से बस सुनते ही रहना। सुनने वालों, आप सभी सुनने वालों से निवेदन है कि आप स्टूडियो की ओर मत तार कीजिए गाना मांग करने के लिए। तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आने वाले प्रोग्राम में फिर से हम आप सभी सुनने वालों को मौका देंगे गाना मांग करने के लिए। चले प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गाना अब की बार पेश होगा। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। प्रदीप के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में, रोटरडम शहर का रहने वाला है और फिल्म जिगरी दोस्त का गीत मांग किया है

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारत में।

का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। रोटरडम शहर का रहने वाला प्रदीप का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रदीप आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम सुनते ही रहना और भाग लेते ही रहना। 13:11 स्टूडियो टाइट आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। सुनने वालों आप सभी सुनने वालों से निवेदन है, गुजारिश है, अब स्टूडियो की ओर मत तार करने के लिए जब भी आप गाना मांग करना चाहेंगे। लेलीस्तात शहर की रहने वाली शलिनी जगाए खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में। काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

लेलीस्तान शहर की रहने वाली शलिनी जगाई की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो एसबीएस के जरिए जो अभी आपने सुना। शलिनी आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शरू तरक से रेडियो एसबीएस का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक अपना मौतकार में अपना घरों में ये प्रोग्राम डीएबी प्लस द्वारा आप सुन सकते हैं और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी प्रोग्राम जोर तोड़ से डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है। तो अपना मौतकार में अपना घरों में प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी हमारा ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत प्रोग्राम में पेश होगा और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत मांग करने वाली है डेलफ शहर की रहने वाली आशा। आशा की मांगी हुई गाना लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

0: लता जी की आवाज में आज फिल्म अभी नेत्रे उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। डेल्फ्ट शहर की रहने वाली आशा की ये मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों यहाँ तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। सभी सुनने वालों जो प्रोग्राम में तार किया है और गाना मांग किया है आप सभी को शुक्रिया धन्यवाद कि आप सभी प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं। आने वाले दिनों इसी तरह से प्रोग्राम में जरूर हिस्सा लेते ही रहना। कल बुधवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। 1 मिनट बाकी है प्रोग्राम में सुबह 11 बजने में। हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार की ओर और फरकीर्स इन फॉर्मेट से भी आपको दिया जाएगी और उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं आगामी प्रोग्राम लेकर के। तो प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek. Beleef de cultuur. Vier het samen. Op 21, 22 en 23 augustus komt alles samen in het Zuiderpark in Den Haag. In een Summer Festival 2026. Het grootste Surinaamse Hindoestaanse familiefestival van Europa. Geniet van live muziek, spectaculaire dansacts, een gezellige kermis en de lekkerste exotische gerechten. Voor jong en oud, voor familie en vrienden, voor iedereen. En op zondag een magische afsluiting met spectaculaire vuurwerkshow. Midden Summer Festival, waar de cultuur, muziek en familie samenkomen. Voor meer informatie en aanmelding standhouders, www.middensummerfestival.nl.

श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में, अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हल्का याग्निक और अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो आपकी बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

ये गाना भी आपने सुना। सुन वालो, रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना शाना और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में के आवाज में

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो

श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में अभी आपने सुना, लाइव के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

रेडियो SBS की सरिये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा सिंह की आवाज में तेरे नैना। अभी आपने सुना गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अपनी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चल

सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

कुमार सानू जी की आवाज में दानव प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनवा की सेवा में सुनवा लो हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है रेडियो SBS का 030-265-65-60 सानू के बाद उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

खास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में एक से एक खूबसूरत गाने आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए चले उदित नारायण एनाल का प्रोग्राम में होगा।

और रेडियो SBS के जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विजय प्रकाश और गायत्री गंजवाला के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अतीफ असलम।

जरूर सुनते ही रहना। चलिए प्रोग्राम में अगली बार अलका एंड विनोद राठौर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और हम अगली बार आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम गैम्बलर। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0832266666।

गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई द मूवी गेम। अब की बार गेम फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है शान की आवाज में।

अब उस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवल की आवाज में अभी आपने सुना। अरिजीत सिंह और पलक की आवाज में एक गाना आज की प्रोग्राम में

रेडियो SBS का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए, वो भी रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए। चले प्रोग्राम में विजय प्रकाश एन शरिया जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

0: दरिया के जल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है।
1: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। इस खास पुरानी नगमे की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जिंदगी से प्यार करना सीख ले।

जिंदगी से प्यार करना सीख ले। आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मन्ना दे और लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना तलत महमूद और लता की आवाज में पेश किया जा रहा है।

तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। चलिए अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में। गाना जो पेश किया जा रहा है, जब भी ये दिल

भी ये दिल उदास होता है। मोहम्मद रफी एंड शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 60। आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो SBS का कंटूर का टेलीफोन नंबर 24 घंटे पर दाग बराबर होता है। किशोर कुमार एनाशा

0: संग रहते हैं, एक डाली के फूल हैं हम, गुलशन में संग रहते हैं, दुश्मन से भी प्यार है, हम भी हंस कर रहते हैं, दुश्मन से भी प्यार है, हम भी हंस कर रहते हैं, हाथ प्यार का छूट नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है,
1: प्यार करा ही रुक नहीं सकता, दिल की उमंग ये कहती है।
2: किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का प्रोग्राम शेरुत्रेख हॉलैंड देश से बस ये प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में, साथ में होगा लता मंगेशकर।

लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चले प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब जो आया है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी के बाद द माइटी मुकीस प्रोग्राम में होगा। माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में, मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार, द मैन विद द फ्रीक्वेंट वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना किशोर एंड आशा। किशोर कुमार एंड आशा
1: आओ ना।

0: नहीं अभी नहीं
1: कभी नहीं।
0: किशोर एन आर शाह ने फरमाई आज की प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, छोड़कर तेरे प्यार का दामन।

चले अपनी बार द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। द माइटी मुकेश प्रोग्राम में

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि रामलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि रामलाल, दी यू फॉर हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल टू रिएक्ट कैन इट ऑलवेज सर्व मा नार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल गरुस्त मा द स्टूडियो नार 032 62 66 11। Voor alle andere info kunt u bellen met 032-65-65-60. En beginnen we meteen met het eerste liedje van vandaag en dat is...

दिलबर मेरे कब तक मुझे यूं ऐसे ही तड़पाओगे, वॉज आउट द फिल्म सत्य पे सत्ता फन अमिताभ बच्चन एंड हेमा मालिनी। Gaan we verder met uit de film Love Yatri. In het programma Gitonkelher via Radio SBS is gezongen door Atif Aslam Terahua.

हाय, क्या थे वो दिन। बस द फिल्म छिछोरे, द फिल्म फन सुशांत सिंह राजपूत सामने में श्रद्धा कपूर, दिल्ली तेज खजौंदोर तुषार जोशी। खजौंदोर अलका याचिनी कम तो फोहत लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर। द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कौन, क्या हुआ तुझे।

0: Churake Dumera, Guria Cheli. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal, Anmol Malik en Anoop Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghayal komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Mijn tumse pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मालिका शरारती है। वो तो ऐसे मजा करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है. देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक. हाँ वादा फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैं आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है. होगा तुमसे प्यारा कौन.

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजांदर आर डी बर्मन लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वास्तव लीजिए फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्राम गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कम्स खजांदर शान एन रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी, ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitong Keleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.